0: पाप कमाते निर्मल होए कर इशनाना गुरपुरे कीने दाना सब कुशल खेम प्रवतारे सही सलामत सब थोगो बारे गुर का शब्द विचारे रहाओ साध संग मल लाथी पार ब्रह्म पयो साथी नानक नाम ते आया आद पुरख प्रभ पाया साध संग मल लाथी पार ब्रह्म पयो साथी नानक नाम ते आया आद पुरख प्रभ पाया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जी सोठ महला पंजेवा गुर का शब्द रखवारे चौकी चो गिरद हमारे राम नाम मन लागा जम लज्जाए कर भागा प्रभ जी तू मेरो सुखदाता बंधन काट करे मन निर्मल पूर्ण पुरख विधाता रहाओ नानक प्रभ बनासी ताकि सेवन बिरती जासी आनंद कर है तेरे दासा जा पूर्ण हुई आसा बिलावल महला पंजेवा ताती वाव ना लग गई पार ब्रह्म शरण आई जो गिरद हमारा राम कार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई राम नाम अंकुद दिया एका नि बलाई रहा रख लिए तेन रखन हार सब ब्याद मिटाई कौ नानक कृपा भई प्रभ भै सहाई सलोक जय साधु को बिंद भजन कीर्तन नानक नीत ना हो ना तू न छुट है निकट न जाइयो दूत सलोक महला पंजेवा मन मह चित वो चित बनी उदम करूट नीत हर कीर्तन

जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच ना हो वई जे सोची लख वार चुपै चुप ना हो वई जे लाए रहा लेवतार भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहस सियान पा लख होहे ता एक ना चलै नाल केव सचियारा होइए केव कूड़ै तुटै पाल हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाईया है इकना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाईया है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोय नानक हुक्मै जे बुझै ता होमै कह ना कोय गावै को तान होवै किसै तान गावै को दात जानै नीसान गावै को गुण।

फिर देह। गावे को जापै दिसै दूर, गावे को वेखै हादरा हदूर। कथना कथी ना आवै तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। देदा दे लैदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विगसै वे परवाहो। साचा साहिब साच नाए, भाख्या भाव अपार। आख मंगह देह, देह दात करे दातार। फेर के अगै रखिया जित दिसै दरबार, मुहाओ के बोलन बोलिया जित सुन धरे प्यार। अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार। नानक एवै जानिया सब आपे सचियार। थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविया गुणी निधान। गाविया सुनिया मन रखिया भाओ, दुख पर हर सुख घर लै जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रहिया समाई। गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर, पार्वती माई। जे हाओ जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर ना जाई। तीरथ नावा जे ते सभावा, विन भाने के नाए करी। जेती सिरठ उपाई, वेखा विन कर्मा के मिलै लई। मत विच रतन जवाहर मानिक, जे एक गुर की सिख सुनी। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा, होर दसूनी होए। नवा खंडा विच जानिया, नाल चलै सब कोए। चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जग ले। जे तिस नदर ना आवई, ता वात ना पुछै के। कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष धरे। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोय ना सुजई, जे तिस गुण कोय करे। सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिया धरत धवल आकाश। सुनिया दीप लोह पाताल, सुनिया पोहे ना सकै काल। नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास। सुनिया ईसर बर्मा इंद, सुनिया मुख सालाहन मंद। सुनिया जोग जुगत तन भेद, सुनिया सासत सिमृत वेद। नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास। सुनिया सत संतोख ज्ञान, सुनिया अठ सठ का इसनान। सुनिया पढ़ पढ़ पावह मान, सुनिया लागै सहज ध्यान। नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास। सुनिया सरा गुना के गाह, सुनिया सेख पीर पात साह। सुनिया अंधे पावह राह, सुनिया हाथ होवै असगाह। नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास। मन्ने की गात कही ना जाए, जे को कहे पिछै पछुताए। कागद कलम ना लिखनहार, मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ना सुरत होवै मन बुद्ध, मन्ना सगल भवन के शुद्ध। मन्ना मोहे चोटा ना खाए, मन्ना जाम कै साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए।
मन्नै मार्ग ठाक न पाए, मन्नै पत स्यो प्रगट जाए, मन्नै मग न चलै पंथ, मन्नै धर्म सेती सन बंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जानै मन कोए, मन्नै पावह मोख द्वार, मन्नै परवारै साधार, मन्नै तरै तारे गुर सिख, मन्नै नानक पवहै न भिख। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जानै मन कोए, पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावह दरगह मान, पंचे सोह है दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान, जे को कह

सूत जे को बुझै होवै सचियार तबलै उपर केता भार धरती होर परै होर होर तिस ते भार तलै कवन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान सुवाले हो रूप केती दात जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह है उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पख सार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेच्छ मल भख खाहे असंख निंदक सिर करहै भार नानक नीच कहै विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लोह असंख कहै सिर भार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जिव पुरमाए तिव तिव पाहे जेता कीता तेता नाओ विन नावै नाही को थाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार भरियै हथ पैर तन देह पानी धोतै उत्तर सो खेह मूत पलीति कपड़ होए दे साबून लइयै ओह धोए भरियै मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखन नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवहु जाहो तीरथ तप दया दत दान जे को पावै तिल का मान सुनिया मन्या मन कीता भाओ अंतरगत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विन गुण कीते भगत ना होए स्वस्त आथ बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन से रुति माहो कवन जित हुआ आकार वेल ना पाया पंडती जे होवै लेख पुराण वखत ना पायो कादिया जे लिखन लेख कुरान थितवार ना जोगी जानै रुत माहो ना कोई जा करता सिरठी काओ साजे आपे जानै सोई केव कर आखा केव सालाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखन सब को आखै एक दू एक सियाना वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा का होवै नानक जे को आपाओ जानै अगै गया ना सोहै पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन एक बात सहस अठारह कहन कतेबा असलू एक धात लेखा होए ता लिखिया लेखा होए विनाश नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप सालाही सालाहे एति सुरत ना पाईया नदिया अतै वाह
पव है समुंद ना जानिय है समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल धन कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मनहु ना विसर है अंत ना सिफते कहन ना अंत अंत ना करण देन ना अंत अंत ना वेखन सुनन ना अंत अंत ना जापै क्या मन मंत अंत ना जापै कीता आकार अंत ना जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो अंत ना जाने कोए बहुता कहिया बहुता होए वड्डा साहिब ऊचा थाओ ऊचे उपर ऊचा नाओ एवड ऊचा होवै कोए तिस ऊचे काओ जाने सोए जेवड आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए केते मंगह जोध अपार केते आ गणत नहीं विचार केते खाप तुटह वेकार केते लै लै मुकर पाहे केते मूर्ख खाही खाहे केते आ दुख भूख साद मार एह पे दात तेरी दातार बंद खलासी भाणे होए होर आख ना सकै कोए जे को खाएक आखन पाए ओह जाने जितिया मोहे खाए आपे जाने आपे दे आख है से पे केई के जिसनो बख्से सिफत सालाह नानक पात साही पात साह अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारिये अमुल भंडार अमुल आवह अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीबान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान अमुलो अमुल आख्या ना जाए आख आख रहे लिव लाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े करह बखियान आख है ब्रह्मे आख है इंद आख है गोपी तै गोविंद आख है ईसर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मुन जान सेव केते आख है आखन पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे एते कीते होर करेह ता आख ना सकहै केई के जेवड भावै तेवड होए नानक जाने साचा सोए जे को आखै बोल विगाड़ ता लिखियै सिर गावारा गावार सो दार केहा सो घर केहा जित बह सर्ब समाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावन हारे केते राग परी स्यो कहियन केते गावन हारे गावह तुहन पौन पानी बह संतर गावह राजा धर्म दुआरे गावह चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गावह ईसर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गावह इंद इदासन बैठे देव त्या दार नाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रतन उपाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गावह जोध महाबल सूरा गावह खानी चारे गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे धारे से तुध नो गावह जो तुध भावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी हो सी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जेव तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई
मुंदा संतोख सर्म पत झोली ध्यान की करह विभूत खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत आदेश तिसा आदेश आदि अनिल अनाद अनाहते जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जा की रिद्ध सिद्ध अवरा साध संयोग वेजोग दोयकार चलावह लिखे आवह भाग आदेश तिसा आदेश आदि अनिल अनाद अनाहते जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओहो वेखै उना नदर ना आ

आखिया है। एक नाम जगदीश ए तो राहे पत पवड़िया चढ़िया होए इक्कीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाईया कूड़ी कूड़ै ठीस आखन जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगन देन ना जोर जोर ना जीवन मरन नह जोर जोर ना राज माल मन सोर जोर ना सुरते ज्ञान विचार जोर ना जुगते छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राते रुते थिते वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिन के नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पानी वै संतर केते कान महेस केते ब्रह्मे घाड़त घड़िया है रूप रंग के वेस केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरेंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप ता किया गल्ला कथिया ना जाहे जे को कहै पिछै पछुताए तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िया सुरा सिद्धा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन मह राम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप ना कथने जाहे ना ओहे मरह ना ठागे जाहे जिन कै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै के लोह करहै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत ना अंत तिथै लो लो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिव कार वेखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जात पाहारा धीरज सुनियार अहरन मत वेद हथियार पाओ खला अगन तप ताओ भांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़िया शब्द सची टकसाल जिन कौ नदर करम तिन कार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खिलै सगल जगत चंगे आई।

कहि जाय कोट इंदर इंदरान साहे साहान गणि जाय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत त्वय सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत पुजंग पर्यात छंद नमस्तवं अकाले नमस्तवं कृपाले नमस्तं अरूपे नमस्तं अनूपे नमस्तं अपेखे नमस्तं अलेखे नमस्तं अकाये नमस्तं अजाये नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं अनामे नमस्तं अठामे नमस्तं अकर्मं नमस्तं अतर्मं नमस्तं अनामं नमस्तं अतामं नमस्तं अजीते नमस्तं अपीते नमस्तं अबाहे नमस्तं अटाहे नमस्तं अनिले नमस्तं अनादे नमस्तं अछेदे नमस्तं अगादे नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं सो एकाय नमस्तं अनेकाय नमस्तं अपूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निर्कर्मे नमस्तं निर्परमे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निर्पेशे नमस्तं निरनामे नमस्तं निरकामे नमस्तं निरताते नमस्तं निरकाते नमस्तं निर्दूते नमस्तं अपूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं निरतापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रिमाने नमस्तं निदाने नमस्तं अगाहे नमस्तं अबाहे नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं परपोगे नमस्तं सोजोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अपंगे नमस्तं अगम्ये नमस्तस्तरमे नमस्तं जलाश्रे नमस्तं निराश्रे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजबे नमस्तस्त अजबे अदेसं अदेसे नमस्तं अपेसे नमस्तं निरतामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्त देवाय नमस्तं अपेवाय नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुबन्मे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौने नमो सर्वरंगे नमो सर्वभंगे नमो कालकाले नमस्तस्त दयाले नमस्तं अबरणे नमस्तं अमरणे नमस्तं जरारं नमस्तं कर्तारं नमो सर्वतन्दे नमोस्त अबन्दे नमस्तं निरसाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनन्ते नमस्तं महन्ते नमस्तस्त रागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद त्वय प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अपू हैं अलेख हैं अपेख हैं नाम है अकाम है अते है अपे है अजीत है अपीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजे है अजाद है अजन्म है अबरण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अल्लाह है अजाह है अनंत है महंत है अलीक है निरसरीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अछूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबाह है अगाह है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है पुजंग पर्यात छंद नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौने नमो सर्व पौने
अनंगी अनाथे निरसंगे परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ति बेपूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेखी अपरमी अपुगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नेत नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इसनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंतर जंतरं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचदानंद सर्वं परणासी अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा बृद्धकर्ता अदो उर्द अर्दं अगं ओगहर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अचेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग पर्यात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं परमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृशं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चरपट छंद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं तराणं सर्वं पुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल छंद त्वय प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजून पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जतर ततर विराज ही अवधूत रूप रेसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख आद पुरख उदार मूरत अजून आद असेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख ना राग जतर ततर दिशा विसा हुए फैल्यो अनुराग नाम काम बेहीन पेखत ताम हुन है जाहे सर्व मान सर्वतर मान सदैव मानत ताहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव ना जान ही जिह बेद और कतेब रूप रंग ना जात पात सो जानई कह जे बतात मातना जात जाकर जन्म मरण बिहीन चक्कर बकर फिरै चतर चक
मान ही पुर तीन लोक चौदह के बिखै जग जापई जिह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सभै जिह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार सर्ब विश्व रचयो स्वयं भव गड़न भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो भरम रहत अभूत अलख अपेस अंग राग न रंग जाक है जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्ब भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्ब लायक सर्ब कायक सर्ब को प्रतपार सर्ब गंता सर्ब हंता सर्ब ते अनपेख सर्ब शास्त्र न जानही जिह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जाक है नेत भाखत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र ना आवहि बहु चित मद भार छंद त्वय प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनभव प्रकाश निस दिन अनास आ जान बाहु साहान साहु राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग अबा अपंग गतमित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निर्भय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्बा भार नाडै अन डंड बाडै चाचरी छंद त्वै प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चत्तर चक्कर करता चत्तर चक्कर हरता चत्तर चक्कर दाने चत्तर चक्कर जाने चत्तर चक्कर वर्ती चत्तर चक्कर भरती चत्तर चक्कर पाले चत्तर चक्कर काले चत्तर चक्कर पासे चत्तर चक्कर वासे चत्तर चक्कर माने आए चत्तर चक्कर दाने आए चाचरी छंद ना सत्तरै ना मित्रै ना भरमंग ना पितरै ना करमंग ना काय अजन्मंग अजाए ना चित्तरै ना मित्रै परे है पवित्रै पृथिसै अदिसै अदृश्य अकृसै भगवती छंद त्वै प्रसाद कथते के आ छिज देसै के आ भिज भेसै के आ गंज करमै के आ भंज भरमै के आ भिज लोकै के आ दित सोकै के अवधूत बरनै के विभूत करनै के राजंग प्रभा हैं के धर्मंग तुजा हैं के आसोक बरनै के सर्बा अपरनै के जगतंग कृति हैं के छत्रंग छत्री हैं के ब्रह्मंग स्वरूपै के अनभव अनूपै के आदि अदेव हैं के आप अपेव हैं के चितरंग बेहीनै के एकै अधीनै के रोजी रजाकै रहीमै रिहाकै के पाक बेऐब हैं के गैबुल गैब हैं के अफबुल गुनाह हैं के साहान साह हैं के कारण कुनिंद हैं के रोजी देहांद हैं के राज करहीम हैं के कर्मं करीम हैं के सर्बं कली हैं के सर्बं दली हैं के सर्वतर मान्या है के सर्वतर दान्या है के सर्वतर गावना है के सर्वतर पावना है के सर्वतर देसा है के सर्वतर पेसा है के सर्वतर राजा है के सर्वतर साजा है के सर्वतर दीना है के सर्वतर लीना है के सर्वतर जा हो के सर्वतर पा हो के सर्वतर देसा है के सर्वतर पेसा है के सर्वतर काला है के सर्वतर पाला है के सर्वतर हंता के सर्वतर गंता के सर्वतर पेखी के सर्वतर पेखी के सर्वतर काजा है के सर्वतर राजा है के सर्वतर सोखा है के सर्वतर पोखा है के सर्वतर तराण है के सर्वतर प्राण है
के सर्वतर देसाय के सर्वतर पेशाय के सर्वतर मान्याय सदैवं प्रधान्याय के सर्वतर जाप्याय के सर्वतर थाप्याय के सर्वतर पान्याय के सर्वतर मान्याय के सर्वतर इंद्राय के सर्वतर चंद्राय के सर्वं कलिमय के परमं फहिमय के आकल अलामय के साहिब कलामय के हुसनुल वजू हैं तमामुल रुजू हैं हमेशुल सलामय सलीखत मुदामय गनीमुल सिकस्तय गरीबुल परस्तय बिलंदुल मकानय जमीनुल जमानय तमीजुल तमामय रुजूअल निदानय हरीफुल अजीमय रजायक यकीनय अनेकुल तरंग हैं अपीद हैं अपंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनीमुल खिराज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त बेपूत हैं प्रभुगत प्रभा हैं सुजुगत सुदा हैं सदैवं स्वरूप हैं अपेदी अनूप हैं समस्तो पराज हैं सदा सर्व साज हैं समस्तुल सलाम हैं सदैवल अकाम हैं निर्बाध स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं ओं आद रूपे अनाद स्वरूपय अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभं सर्वभागे सुसर्वा अनुरागय त्रिभुगत स्वरूप हैं अछिज हैं अछूत हैं किनरकं परनास हैं पृथ्वीउल प्रवास हैं निरुक्त प्रभा हैं सदैवं सदा हैं विभुगत स्वरूप हैं प्रयुगत अनूप हैं निरुक्त सदा हैं विभुगत प्रभा हैं अनुक्त स्वरूप हैं प्रयुगत अनूप हैं चाचरी छांद अपंग हैं अनंग हैं अपेख हैं अलेख हैं अपर्म हैं अकर्म हैं अनाद हैं जुगाद हैं अजय हैं अभय हैं अभूत हैं अदूत हैं अनास हैं उदास हैं अतंद हैं अबंध हैं अपगत हैं विरक्त हैं अनास हैं प्रकाश हैं निचिंत हैं सुनिंत हैं अलेख हैं अदेख हैं अलेख हैं अपेख हैं अटाह हैं अगाह हैं असंभ हैं अगंभ हैं अनिल हैं अनाद हैं अनित हैं सुनित हैं अजात हैं अजाद हैं चरपट छंद त्वय प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं तराणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्तार सावल छंद त्वय प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं बेपूते परमाथं परमाथे सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्बाध बेपूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे ना पोतराय ना पुत्रय ना सत्रय ना मित्रय ना ताताय ना माताय ना जाताय ना पाताय निरसाकं सरीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती छंद त्वय प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमेशुल सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चिराग हैं के कामल करीम हैं के राज करहीम हैं के रोजी देहांद हैं के राज कर हिंद हैं करीमुल कमाल हैं के हुसनुल जमाल हैं गनीमुल खिराज हैं गरीबुल निवाज हैं हरीफुल सिकान हैं हिरासुल फिकान हैं कलंकं परनास हैं समस्तुल निवास हैं अगंजुल गनीम हैं रजायक रहीम हैं समस्तुल जुबा हैं के साहिब किरा हैं के नरकं परनास हैं बहेस्तुल निवास हैं के सर्बुल गवान हैं हमेशुल रवान हैं तमामुल तमीज हैं समस्तुल अजीज हैं परं परम ईस हैं समस्तुल अदीस हैं अदेशुल अलेख हैं हमेशुल अपेख हैं
जमीनुल जमा है, अमीकुल इमा है, करीमुल कमाल है, के जुर्रत जमाल है, के अचलंग प्रकाश है, के अमितो सुबास है, के अजब स्वरूप है, के अमितो बेपूत है, के अमितो पसा है, के आत्म प्रभा है, के अचलंग अनंग है, के अमितो अभंग है, मद पार छंद त्वय प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रपंज अन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अनछिज अंग आसन अभंग उपमा अपार गत मित उदार जाल थल अमंड दिस विस अभंड जाल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित धर तुरास आ जान बाहु एकैस दाहु ओंकार आदि कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल घर घर प्रणाम चित चरण नाम अन छिज गात आजिज ना बात अन झंझ गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन थट अपार आडीठ धर्म अत ढीठ कर्म अन बरन अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वै प्रसाद करुणालय है अर कालय है खल खंडन है मह मंडन है खाल खंडन है मह मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है काल कारण है सर्ब उबारण है त्रित के धरण है जग के करण है मन मान्या है जग जानिया है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्ब पास्या है सर्वनास्या है करुणाकर है विश्वंग पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खल खंडस है पर ते पार है करुणाकार है अजपा जप है अथपा थाप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी तृत है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है नर नायक है खल कायक है विश्वंग पर है करुणालय है निरिप नायक है सर्व पायक है भाव भंजन है अर गंजन है रिप तापन है जप जापन है अकलंग कृत है सर्वा कृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म बस है जस के जस है पुजंग पर्यात चंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग सांत रूपे नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो सांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग बेपूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी नारागे नारंगे नारूपे नारेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे पुजंग पर्यात छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग परनासी
सो धर्मं बेपुते सदा सच दानंद सतरंग परनासी करी मुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेपुते गजायब गनीमे हरियं करियं करी मुल रहीमे चत्तर चक्कर वर्ते चत्तर चक्कर भुगते स्वयं भव सुबं सर्वदा सर्व जुगते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपुते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपुते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पात साहि दसवी त्वै प्रसाद सुवैये सरावग सुध समूह सिधान के देख फिरयो घर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहयो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के मातिम तंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बिद नियावत सीस न जात बिचारे एते भय तो कहा भय भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिरै सब देश दिसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख पवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक विशेखै वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेखै पवन आहार जति जत धार सबै सो विचार हजारक देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखै सुध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुरजान दलेंगे भारी गुमान परे मन मै कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीन मरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अभिचार है सार की धार पछैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सो बातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सुवेक देवैया दानव देव फनेंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जाल मै थाल मै पाल ही पाल मै सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्तर सबै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजिंदर नरादप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कूट स्नान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिशन सची पत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस हैं पग ते नर फेर ना देह धरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहयो बाक ध्यान लगायो नात फिरयो लिए सात समुंदरन लोक गयो परलोक गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहौ सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरयो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लखयो हर अवाची दिशा मह काहू पछाह को सीस निवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर किरिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो
को बुतान को पूजत है पास, को मृतान को पूजन तायो, कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है पात साही दसवी कबियो बाच, बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहै हमारा, अपना जान करो प्रत पारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दै मोहे बचावहो, सुखी बसै मोरो परिवारा। सेवक सिखे सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब बैरन कौ आज संघरियै। पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रहै प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बार चाहाऊं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिखे हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दै मुझै उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हुजो सदा हमारे पछा, श्री अस तुझ जू करिया हो रक्षा। राख लेहो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दास कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमासा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जछन उपजायो। आदि अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझी अहो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को साव गुण सुख दियो, सतरन को पालमो बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाना, घट घट के पट पट की जाना। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धार सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निरिबकार निरलंभ, आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताका ओ कर पाहन अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह भेव। आप आपुनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा ना जाय पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप सुरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत भुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुवै बैठा, कहूं सिमट भयो संकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचम भव, आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखे उबार असिखे संघरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता,
सकल मलेच्छ करो रान काता, जे अस तुज तव सरणी परे, तिन के दुष्ट दुखित हुआ मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिन के

संकट सब टारे। जो काल को एक बार त्याह है ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छाह छुवै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं सरन तिहारी आप हाथ दै लेहो उबारी। सर्ब ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन सुबराता। किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छाय करता। श्री अस तुज जब भय दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावै सोई दुख ना तिसै व्यापत कोई। अडिल सुनै गोंग जो याहे सुरसना पावई। सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नर के रहै। हो जो या की एक बार चाओ पई को कहै चाओ पई। संबत सत्रह सहस पनिजै अर्ध सहस पुन तीन कहिजै। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीरस तुद्रव ग्रंथ सुधारा। सुवैया पाए गहे जाब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहै मत एक ना मान्यो। सिमरित शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहै हम एक ना जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो। सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै। गहयो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। सगल द्वार कौ छाड़ कै गहयो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया। शब्दोता गावहु हरि केरा मन जिनी वसाया। कहै नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे। दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे। कहै नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा। घर ता तेरा सब किछ है जिस देहे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कहै नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वसया। जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो जिस दिया एह वडियाईया। कहै नानक सुनहो संत हो शब्द धरहु प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सभागै। घर सभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया। पंच दूत तुद वास कीते काल।

ਨਾਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ, ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੁਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ, ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਦਿਵੈ ਬਜ ਹੋ, ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ, ਤੁਧ ਬਾਜ ਸਮਰੱਥ ਕੋਏ ਨਾਹੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਣਵਾਰੀਆ, ਏਸ ਨਾਉ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ। ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਲਿਵੈ ਬਜ ਹੋ, ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੱਟੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ, ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ, ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਸੋ ਜਨ ਦੇਹੇ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਹਿ ਦਹਿ ਦਿਸ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸਵਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਣਾ ਭਾਵੈ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇਹੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ। ਆਵਹੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਹੋ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ, ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ, ਕਿਤ ਦੁਆਰੈ ਪਾਈਐ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਪ ਗੁਰ ਕਉ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਐ ਪਾਈਐ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ, ਗਾਵਹੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨਹੋ ਸੰਤ ਹੋ, ਕਥਿਹੋ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ, ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਏਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ ਠਗੌਲੀ ਪਾਈਆ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟਹੋ, ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ, ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹੋ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ, ਚੱਲੈ ਨਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀਂ, ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉ ਚਿਤ ਲਾਈਐ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ, ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ, ਹੋਵੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਅੰਤੋ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣ ਹੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣ ਏ, ਆਖ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਖ ਹੈ, ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਗਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਨੀ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ, ਇੱਕ ਵੇਖ ਪਰਸਨ ਆਇਆ, ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੂਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਤੁਠਾ, ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਭਗਤਾ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾ ਹਕੇਰੀ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਖੰਨਿਆ ਹੋ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲ ਹੋ ਨਿੱਕੀ, ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ, ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾ, ਜੁਗ ਹੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ, ਜਿਉ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਹੈ ਤਿਵ ਚੱਲਹਿ ਸੁਆਮੀ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਜਿਵ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਹੈ ਤਿਵੈ ਚੱਲਹਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵ ਹੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਾਏ ਹੈ, ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਵ ਹੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਸੁਖ ਪਾਵ ਹੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵਹਿ,
एहो सोहेला सबद सुहावा, सबदो सुहावा सदा सोहेला। सत गुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसया, जिन तुरहो लिखिया आया। एक फिर है कनेरे कर है गल्ला, गल्ली किनै ना पाया। कह नानक सबद सोहेला, सत गुरु सुनाया। पवित होए से जना जिने हर त्याया, हर त्याया पवित होए। गुरमुख जिने त्याया पवित, माता पिता कुटुंब सहत सियो। पवित संगत सबाइया, कह दे पवित सुन दे पवित। से पवित जिने मन वसाया, कह नानक से पवित जिने गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज ना उपजै, बिन सहजै सहसा ना जाए। नह जाए सहसा कितै संजम, रहे कर्म कमाए। सह सह जियो मलीन है, कित संजम धोता जाए। मन धोवहो सबद लागहो, हर स्यो रहो चित लाए। कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, एह सहसा इव जाए। जियहु मैले बहरहु निर्मल, बहरहु निर्मल जियहु ता मैले। तिनी जन्म जुवै हारिया, एह तिसना वड्डा रोग लगा। मरन मनहु विसारिया, वेदा मह नाम उत्तम सो सुन है नाही। फिर है ज्यो बेतालिया, कह नानक जिन सच तजिया। कूड़े लागे तिनी जन्म जुवै हारिया। जियहु निर्मल बहरहु निर्मल, बहरहु ता निर्मल जियहु निर्मल। सतगुर ते करनी कमानी, कूड़ की सोए पहुचै नाही। मनसा सच समानी, जन्म रतन जिनी खटिया। भले सेवन जारे, कह नानक जिन मन निर्मल। सदा रह है गुर नाले, जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै। होवै ता सनमुख सिख कोई, जियहु रहै गुर नाले। गुर के चरण हृदय त्याए, अंतर आत्मै समाले। आप छड सदा रहै परणै, गुर बिन अवर न जाने कोए। कह नानक सुनहु संतह, सो सिख सनमुख होए। जे को गुर ते वेमुख होवै, बिन सतगुर मुक्त ना पावै। पावै मुक्त ना होर थै कोई, पुछो हो बिबेकिया जाए। अनेक जूनी भरम आवै, बिन सतगुर मुक्त ना पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी, सतगुरु शब्द सुनाए। कह नानक विचार देखहो, बिन सतगुर मुक्त ना पाए। आवहो सिख सत गुरु के प्यारिहो, गावहो सच्ची बाणी। बाणी ता गावहो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी। जिन कौ नदर कर्म होवै, हृदय तिना समाणी। पीवहो अमृत सदा रहो हर रंग, जपहो सारिग पाणी। कह नानक सदा गावहो एह सच्ची बाणी। सत गुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सत गुरु बाजहो होर कच्ची बाणी। कह दे कच्चे सुन दे कच्चे, कच्ची आख वखाणी। हर हर नित कर है रसना, कहया कछु ना जानी। चित जिन का हिर लया माया, बोलन पैर वाणी। कह नानक सत गुरु बाजहो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा, एहो हुआ समाओ। शब्द सेती मन मिलिया, सच्चा लाया पाओ। आपे हीरा रतन आपे, जिसनो दे बुझाए। कह नानक शब्द रतन है, हीरा जित जड़ाओ। सेव सकत आप उपाय, कै करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आप वेखै, गुरमुख किसै बुझाए। तोड़े बंधन होवै मुकत, शब्द मन वसाए।
गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै, एकस सिव लिव लाए, कहे नानक आप करता आपे हुकम बुझाए। सिमरित शास्त्र पुन पाप बिचार दे, तत्तै सार ना जानी, तत्तै सार ना जानी, गुरु बाजहो तत्तै सार ना जानी, तिहि गुणी संसार भ्रम सुता, सुत्या रैन विहानी। गुर किरपा ते से जन जागे, जिन्ना हर मन वसया, बोलह अमृत बानी। कह नानक सो तत् पाए, जिसनो अन दिन हर लिव लागै, जागत रैन विहानी। माता के उदर मह प्रतपाल करे, सो क्यों मनोह विसारियै, मनहो क्यों विसारियै, ए वडदाता जे अगन मह आहार पहुचावै। ओसनो केहो पोहे ना सकी, जिसनो अपनी लिव लावै, अपनी लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभालिया। कह नानक ए वडदाता सो क्यों मनहु विसारिया। जैसी अगन उदर मह तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जेही, करता खेल रचाया। जा तिस भाणा ता जम्या, परवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। एह माया जित हर विसरै, मोह उपजै भाव दूजा लाया। कह नानक गुर प्रसादी, जिना लिव लागी तिने विचे माया पाया। हर आप अमुलक है, मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया जाए, किसै विटहो रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुर जे मिलै, तिसनो सिर सौपियै, विचहु आप जाए। जिस दा जियो तिस मिल रहै, हर वसै मन आए। हर आप अमुलक है, भाग तिना के नानका, जिन हर पलै पाए। हर रास मेरी मन वनजारा, हर रास मेरी मन वनजारा, सतगुर ते रास जानी। हर हर नित जपिहो जियाहो, लाहा खटिहो दिहाड़ी। एहो धन तिना मिलिया, जिन हर आपे भाणा, कह नानक हर रास मेरी मन हुआ वनजारा। ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए, होरत कितै जिचर हर रस पलै ना पाए। हर रस पाए पलै पिया, हर रस बहुड़ ना तृष्णा लागै आए। एहो हर रस करमी पाईऐ, सतगुर मिलै जिस आए। कह नानक होर अन रस सब विसरे, जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया, हर तुम मह जोत रखी, ता तू जग मह आया। हर जोत रखी तुद विच, ता तू जग मह आया। हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाए जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया, ता चलत हुआ, चलत नदरी आया। कह नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी ता तू जग मह आया। मन चाव भया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदर बनिया। हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापै। गुर चरण लागे दिन सभागे, अपना पिर जापै। अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो। कह नानक प्रभ आप मिलिया, करन कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया, इस जग मह आए कै, क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग मह आया। जिन हार तेरा रचन रचिया,
ਸੋ ਹਾਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰ

एक है, हर बिन अवर ना कोई। कहे नानक एहे नेतर अंध से, सतगुर मिलया दिब दृष्ट होई। ए श्रवण हो मेरे हो, साचै सुन नैनो पठाए, साचै सुन नैनो पठाए, शरीर लाए सुनहो सत बाणी। जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समाणी, सच अलख वेडाणी। ताकि गत कही ना जाए, कहे नानक अमृत नाम सुनहो, पवित्र होवहो, साचै सुननै नो पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख कै, वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए। दसवा गुप्त रखाया, गुरद्वार लाए भावनी, इकना दसवा द्वार दिखाया। तह अनेक रूप नाव नाव निद, तिस दा अंत ना जाई पाया। कह नानक हर प्यारे जियो, गुफा अंदर रख कै, वाजा पवन वजाया। एहो साचा सोहेला, साचा घर गावहो, गावहो ता सोहेला घर साचा। जिथै सदा सच त्याव हे, सचो त्याव है जा तुद भाव है, गुरमुख जिन्ना बुझाव हे। एहो सच सबना का खसम है, जिस बक्से सो जान पाव हे। कहे नानक सच सोहेला, सचै घर गाव हे। आनंद सुनहो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल वेसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भये सरसे, पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भार पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तुरे। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भार पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तुरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तोदया गया।

जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगण हमारे दया कर हो किछ मेहर उपावहो डुब दे पत्थर तारे जियाड़ा अगन बराबर तपै पीतर वगै काती प्रणवत नानक हुकम पछाण सुख होवै दिन राती सुकहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुबाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसामदी

सच्चे त्रिखण सच्चे ब्रह्मण सच्चे तिर सच्चे आकार सच्चे त्रिखण सर विचार सच्चा तिरम सच्चा दीवान सच्चा तिरम सच्चा प्रमाण।

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद विस्माद रंग विस्माद नागे फिर जंत विस्माद पूर्ण विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड़े विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी स्वाद।

भोड़ सच्चा साहेब एक दो दिन सचो सच वर्ताया, जिस तो दे तिस मिले ताते नहीं सच कमाया, सतगुरु मिले सच पाया, जिनके हृदय सच वसाया।

0: प्रवेश किया और प्रेम उनके चार विचार आओ भगत कहने सदाई तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी।
1: सतगुरु बिटो वारे जित मिले कसम संभाल लिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया ने जगत निहाल लिया खसम छोड़ जुड़े लगे डूबे से बन जा रहा सतगुरु है बोता वे लगे।

बड़ी साहिब हुए दयाल कृपा करे तासा ही कर कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म मनाए सी हुक्म मने होवे प्रवान दा कसमे कार मेहर पाए सी कसमे पावे सो करे।

साध जना की सेवा लागै, चार पदार्थ जे को मागै। साध जना की सेवा लागै, जे को अपना दुख मिटावै। हर हर नाम हृदय सद गावै, जे को अपनी शोभा लोरै। साध संग एह हौमै शोरै, जे को जन्म मरण ते डरै। साध जना की सरनी परै, जिस जन काओ प्रभ दर्श प्यासा। नानक ताकै बल बल जासा, जिस जन

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निद आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवे पातशाह धन सत गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थाई होए सहाय। दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप। जुगो जुग अटल धन सत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया दे पाठ। दर्शन दीदार जी का त्यांतर के बोलो जी।

कंचन कलस जैसे बाको पै सुदो होए। माटी को कलस फूटे जुरे न जतन सै। कंचन कलस जैसे बाको पै सुदो होए।

साहब तीसरी उदाहरण दे रहे ने, कहंदे भाई जिवें लकड़ी दी सोटी छोटी होवे वो अग ते सेकण नाल सीधी हो जाती है, थोड़ा जिहा बिंग होवे कोई बल होवे कोई गुलाई होवे, आ लकड़ दा जिन्ना फर्नीचर है इहनूं गुलाई दित्ती जाती है, सेक दित्ते जाते ने, गर्म कीते करके गुलाइयां दित्तियां जांदियां ने, ईवन जिहड़ा लोहा किड्डा हार्ड है किड्डा सख्त है इहनूं भी जदों कोई शेप दित्ती जाती है कोई आकार दित्ता जाता है वह भी गर्म करके दित्ता जाता है। जिन्या आपां देखदे आं लोहे दीआं गेट ग्रिल बणदे ने सारा कुछ, इहनूं पूरा गर्म करके पहलां फिर इहनूं शेप फिर इहनूं आकार दित्ता जाता। लकड़ दीआं सोटियां नूं भी जदों कई बारी सेक दे के उहनां नूं गुलाई दित्ती जाती है, उहनां नूं उहनां दा जिहड़ा टेढ़ापण है बिंगापण है वह सीधा किया जाता है। कैसी उदाहरण दी है, जैसे लकटी लकड़ दी सोटी, भाई साहब कहिंदे ने अगन सेकत ही सूधी होए, सेकण नालों सुधी हो जाती है, मन लिया। पर अगे पता की कहिंदे, सवान पूस पटंतरो प्रगट मन तन सै। सवान मीनज कुत्ता, कुत्ते दी जिहड़ी पूस है, कहिंदे ने सवान पूस पटंतरो प्रगट मन तन सै, कहिंदे कुत्ते दी जिहड़ी पूछ है वह मंत्र मारिया भी होर उपाओ कीतिया भी सिद्धि नहीं की जा सकती। ये उदाहरण बाबा जी ने बाणी चिक नहीं बहुत बार दिती है, स्वान पूछ ज्यों भयो न सूदो, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने यह बचन किते ने। कहिंदे जिहड़ा मन है यह भी इसे तरह का, कुत्ते दी पूछ गुलाई च है, और भावें कि अजकल तखिमा करना मैनू मैं उस पास बहुता नहीं जाना चाहता, भी कुत्तियां दीयां वरायटियां बहुत ने, नस्लां बहुत ने, कई कुत्तियां दीयां पूछां शुरू तो ही बढ़ दित्तियां जांदियां ने, वह एक वक्रा कंसैप्ट है ना, आपां उस पास नहीं जाना। पर जिहड़ा साडा देसी सिस्टम सी, पंजाब दा सिस्टम सी, उत्थे अज भी तुसीं देखो भी सारे कुत्ते जिहड़े ने जिवें फिरदे ने, कुत्ते पूछां हिलांदे ने, वह उदाहरण महाराज ने बाणी च वार वार दित्ती है। हालांकि कई बार यह भी इशू बन जाता है भी जो कुत्ते का जिक्र आता है कुत्ते वर्गा कहा जाता, बहुत सारे लोग इतराज करते हैं क्योंकि इतने थोड़ा कुत्तियां नूं होर एंगल तो वेखिया जाता है, इतने कुत्तियां नूं प्यार भी किया जाता है। चलो सिर्फ इन्नी कि आप गल करनी है भी जिवें कुत्ते की पूछ जिहड़ी है, जिहड़ा मर्जी मंत्र मार दो जिहड़ा मर्जी उपाओ कर लो, तो जिन्ना चिर मर्जी उन्हों किसी पाइप दे विच पा के रख लो, सालां बद्दी भी पा के रख लो, जदों कढ़ोंगे निकालोंगे तो वह जिहड़ी पूछ है उन्हें फिर गुलाई दे विच आ जाना। हुण बाबा जी ने बाणी दे विच जिक्र वार वार कीता है, ये असल विच कुत्ते दा जिक्र नहीं है भी कुत्ते दी पूछ गोल क्यों होगी जां उन्हों सिद्धी करना कोई बंदे दा काम है भी इस सिद्धि करे बिना सरना नहीं, ये सब कोई गल नहीं है, कुदरत दा सिस्टम है, कुदरत ने उहदी उस तरह की बनाती है तो ठीक है जिवें चली, पर यह कोई सिद्धि करके उन्हें कोई होर दा सुभाव नहीं बदल जाना भी जे कुत्ते दी पूछ सिद्धि हो जाए। पर एक ये आम उदाहरण दिती जाती है भी ये तो कुत्ते दी निरी पूछ है, इन्हें सीधा नहीं होना, इन्हें बदलना नहीं है, इन्हें अपने आप नूं चेंज नहीं करना, उदों ये उदाहरण दिती जाती है क्योंकि सौखी सी उदाहरण, कुत्ते वेले आम सीगे, कुत्ते पिंडां च फिरदे सी ते सारिआं नूं पता हुंदा सीगा, जोर मारिआं भी उह सिद्धी नहीं हुंदी। ये महाराज ने बंदे नूं समझाया भी कई बंदे भी कुत्ते दीआं पूछां वर्गे हो जांदे ने, माफ़ी देनी आपां आम कह दिंदे हां भी इहनूं नहीं समझाउण दा फायदा, इहनूं नहीं इहदे बहुते बहुत जोर लाउण दी लोड़ नहीं है, तां निरा कुत्ते दी पूछ है, उहदा भाव कुत्ते दी पूछ थोड़ा हुंदा, उह तां इक प्रतीक हुंदा है, उह तां इक तरीका हुंदा गल करन दा गल समझाउण दा। भाई गुरदास इत्थे की कहिंदे ने, कहिंदे लकड़ी जिहड़ी हार्ड है, हालांकि कुत्ते दी पूछ हार्ड नहीं हुंदी, लकड़ी जिहड़ी हार्ड है सख्त है, जे उह बिंगी हो भी जाए उहनूं ते थोड़ा गर्म करके सीधा कीता जा सकदा है, पर सवान पूछ पटंतरो प्रगट मन तन सै, कहिंदे जिन्ना मर्जी कोई उपा करे जिन्ना कोई मर्जी मंत्र मारे नहीं सीधा हुंदा। हुण उदाहरण आपां सुन लिया, छे उदाहरण दित्तियां ने, रिपीट करा, पहली उदाहरण दित्ती है बई सोने दा कलस होवे,
ਟੇਢਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਭੱਜ ਜਾਏ, ਟੇਢਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਹਿਣਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜੁੜਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਬਸਨ ਮਲੀਨ, ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਐਨ ਪਲੀਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ, ਫਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਬਲੀ ਜਾਂ ਕੋਲੂ ਦੀ ਲੀਰ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜੀ ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਲੱਕੜੀ ਟੇਢੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਵਿਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ

गुरु रूप गुरु प्यारी सत्संगत कीता लोड़िया काम सवार पे आखिए कार्ज दे सवार सतगुर सत साखीए आप सब संगत ने पावन शब्द श्रवण किया है। हुण सतगुरां दे चरणां विच अरदास होवेगी जिस विच लड़का लड़की अते इन्हां दे माता पिता जी खड़े होणगे, बाकी सरबत संगत इसे तरह सजी रहेगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

ही परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी सच्चे पातशाह जी ने अपार कृपा बख्शिश मेहरामत कीती है। लख खुशिया पात साहिया जे सतगुर नदर करे निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। आप जी सरदार हरकेवल सिंह जी सिद्धू अते बीबी दलवीर कौर जी सिद्धू तिना दे सपुत्र करनवीर सिंह सिद्धू अते सरदार जसपाल सिंह जी सैणी बीबी सतविंदर कौर जी सैणी तिना दी सपुत्री बीबी तवलीन कौर तिना दे आनंद कार्ज समागमां विच शामिल होण वास्ते पहुंचे हो। सो हुण मैं बेनती करां आनंद कार्ज समागम की प्रारंभता हो चुकी है। सरदार जसपाल सिंह जी नूं कि उह अगे आउण आके करनवीर सिंह सिद्धू दा पल्ला अपनी धी बीबी तवलीन कौर नूं फड़ाउणगे नाल ही रागी सिंह पल्ले दा शब्द गायन करनगे जी।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निद आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थाई होए सहाय। दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप। जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीयां दे पाठ। दर्शन दीदार जी का त्यांतर के बोलो जी। पांच प्यारे चार साहिबजादे चाली मुक्ते समूह संगतां। हठियां जपियां तपियां जिन्हां आप जी दा नाम जपिया। वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही। देख के अणडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी पावन पवित्र कमाई दा त्यांतर के बोलो जी। जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते। बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां। चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चिराए गए। बच्चियां दे टोटे टोटे करके गलां विच हार पवाए। सवा सवा मन दे गिले पीसने पीसे खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा कीता। जंडा नाल बन के साड़े गए देगां विच उबाले गए। पुठियां खलां लोहाइयां गुरुद्वारियां दी सेवा संभाल दे लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां संग निबाही। तिनां समूह शहीदां दी पावन पवित्र कमाई दा त्यांतर के बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दी पावन कमाई दा त्यांतर के बोलो जी। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवण का सदका सर्ब सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियायत। देग तेग फतेहे बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाए खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। बख्शो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे पवित्र यात्रा अते दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा हे अकाल पुरख वाहिगुरु। अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारियां गुरधामां जिन्हां तो पंथ नूं

0: सुखी वसे सरबत, दादिया सुखी वसे सरबत।
1: नियत कीता होया समा समाप्त हो चुका है। आओ हुण बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई दविंदर सिंह जी श्री फतेहगढ़ साहब वाले आप जी नूं गुरु चरणां नाल गुरबाणी कीर्तन द्वारा जोड़नगे। आओ इसे तरह बैठ के कीर्तन सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

दुख दारू सुख रोग भया जा सुखताम न हो तू करता करना मैं नाही जा हो करी न हो बलिहारी।

रहाइया आखण वाला क्या बेचारा सिफती परे तेरे पंडारा जिस तू देह तिसै क्या चारा नानक सच सवारण हारा आसा महला पहला आखा जीवा विसरै मर जाओ आखण औखा साचा नाओ साचे नाम की लागै भूख

जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धौर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया,

परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुत बनता कोए ना किसकी तरिया सिर

जो सेवह तुद जी जन नानक तेन कुर्बान। हर त्यावह तुद जी से जान जोग मह सुखवासी। से मुक्त पए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हार निरपौ त्याया जी तिनका पौ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन

नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई

तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुदे आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई।

है बाणी पढ़ दिया, कथा कीर्तन विचार कर दिया, ढाडी वारा गाउंदिया होइया भुलां लई खिमा बख्शिश करनी, अगे तो समत बख्शनी,

दया करहो किछ मेहर उपावहो, डुबदे पत्थर तारे हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाही।

आहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। जैत श्री

तिन मात कीजै हर बांझा, तिन सुनी देह फिर है बिन नावै, ओए खप खप मुए करांजा। जिन हर हिरदै नाम ना बस्यो, तिन मात कीजै हर बांझा। तिन सुनी देह फिर है बिन नावै, ओए खप खप मुए करांजा। मेरे मन जप राम नाम हर माजा, हर हर कृपाल कृपा प्रभ तारी, गुर ज्ञान दियो मन समझा। रहाओ हर कीरत काल युग पद उत्तम, हर पाइए सतगुर माजा। हौ बलिहारी सतगुर अपने, जिन गुप्त नाम परगाजा। दर्शन साध मिलियो वड भागी, सब किल बिख गए गवाजा। सतगुर साहु पाया वड दाना, हर किए बहु गुण साजा। जिनको कृपा करी जग जीवन, हार उर तारियो मन माजा। धर्म राय दर कागद फारे,